वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागारणाय सतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरन्तकारे बानो शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु।

विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

0: Why I live Sunday noon cha Radio Silence 89.8 megahertz.
1: Jai Jai Kali. Jai Jai Gorakhpandi. Jai Jai Kali. Jai Jai Kali. Jai Jai Gorakh. Jai Jai Gorakh. Hara Hara Mahadev. Jai Shiva Shankar. हर हर महादेव हर हर महादेव जय शिव शंकर जय शिव शंकर हर हर महादेव हर हर महादेव
2: बड़ी बुम्बा।

जब से ठहर गया रे, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राह धड़कने लगे, देखो जो नायक

0: साहिनो समय सूचक अहिले रातिको 9 बज्यो 8:09 PM
1: मनोरञ्जन को अटूट साहिनो रेडियो साहिनो
2: 50 नम्बर